जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड एफएम रेनबो चैनल से बोल रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 और लगभग 50 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है एक संक्षिप्त जानकारी। अब से लेकर दिन भर हमारी विभिन्न सभाओं में प्रसारित होने वाले अलग अलग कार्यक्रमों की। अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद नेहा बेनीवाल लेकर आएंगी कार्यक्रम सुप्रभात। इसके साथ साथ आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। फिर से हिंदी में समाचार होंगे सुबह के 7 बजे। 7:02 से सुनिएगा गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जिसे लेकर आएंगे निखिल कुमार। इसमें वन महोत्सव सप्ताह पर एक विशेष जानकारी आपको दी जाएगी। नेहा बेनीवाल फिर से होंगी हमारे साथ ठीक 8 बजे सुबह गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर। दिल के तराने गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप ताजा तरीन बॉलीवुड गानों पर आधारित यह कार्यक्रम होगा, जिसे लेकर आएंगे निखिल कुमार प्रातः 9 बजे।

सुबह के 10 बजे जुड़िएगा एक बार फिर से हमारे साथ हिंदी में समाचारों के साथ। इसके बाद वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा मैचलेस म्यूजिक आवर, जिसे आज आप तक पहुंचाएंगी रेणुका। रेणुका के बाद बबीता रावत लेकर आएंगी कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स सुबह 11 बजे से। दोपहर 12 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। इसके बाद पुनः रेणुका ही लेकर आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित हमारी अन्य दैनिक प्रस्तुति प्ले इट कूल। मेरा वाला सॉन्ग, ये कार्यक्रम बबीता रावत लेकर आएंगी आप तक 1:02 से। दोपहर के 2 बजे सुनेगा आशियाना कार्यक्रम, जिसे एसएम शाहिद प्रस्तुत करेंगे। और इसके साथ साथ इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक

0: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी NCR में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल NCR, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सीमित रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the relationship.
5: During the first economic security dialogue held in Tokyo in November 2024, the two sides identified 5 sectors as priority sectors for strategic collaboration. These are semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, clean energy and information, and communication technology. The India-Japan relationship is marked by frequent high-level political engagement. Most recently, Prime Minister Narendra Modi interacted with the Japanese Prime Minister during the G7 summit in France. The two leaders had earlier met on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg in November last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the partnership. An action plan for Japan-India human resource exchange and cooperation was launched during the annual summit in 2025, which envisages two-way exchange of 5 lakh personnel in 5 years, including 50,000 skilled and semi-skilled personnel from India to Japan. Apart from annual summits, high-level exchanges and meetings regularly take place at foreign Minister, Defence Minister, NSA, Foreign Secretary and other levels. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
4: Prime Minister Narendra Modi has said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said he is delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Employees Provident Fund Organization, EPFO, has officially notified an 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. The ratings have been declared following approval of the Ministry of Railway, for the Ministry of Labour and Employment as per the EPF scheme 1952. It has directed regional and zonal offices to credit the approved interest to members' EPF accounts. The government issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. According to the sources, the Ministry of Electronics and Information Technology has directed Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. More from our correspondent.
6: The sources said that the ministry has taken note of a public announcement by WhatsApp that it has commenced a phased global rollout, including in India, of its usernames feature. It said that once the feature is enabled, the recipient's phone number will no longer be visible to a first-time contact and that an optional username key may be set as an additional control. Sources said there are concerns that the feature may increase incidence of online frauds, phishing, digital arrest, scams and impersonation attacks. Concerns have also been raised that the feature may facilitate impersonation and identity spoofing. The sources further said that the ministry has directed Meta to furnish a detailed explanation on this feature within 3 days and not roll out the feature until consultation on the matter is over. Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
4: The Delhi government has notified a permanent winter pollution master plan that will remain in force every year from 1st of November to 20th of February to curb seasonal air pollution in the national capital. We have a report.
7: Chief Minister Rekha Gupta said the new framework consolidates existing pollution control measures into a single set of rules, ensuring timely implementation without issuing separate orders every winter. Vehicles without a valid pollution under control certificate will not be supplied fuel at petrol pumps throughout the year. From 1st November to 31st January, entry of non-Delhi registered vehicles below BS6 emission standards will also be prohibited. The government has also announced that parking charges at authorized parking facilities will be doubled from 1st November to 28th February, while 50% of employees in government and private offices will work from home from 1st November to 31st January. Demolition work and open dust generating construction activities will remain prohibited from 1st November to 31st January, except for essential public infrastructure projects. Large commercial buildings and major construction sites will be required to install anti-smog guns. With Suparna and Arzu, Chirag Jha from News Desk.
4: The government has given 1 year extension to Foreign Secretary Vikram Misri till 14th of July next year. Mr. Misri assumed charge as Foreign Secretary on 15th July 2024. He was India's ambassador to China from January 2019 to December 2021. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha flagged off the first batch of pilgrims of the annual Sri Amarnath Ji Yatra from Bhagwati Nagar Base Camp in Jammu this morning. The 57-day annual pilgrimage officially commences across the twin tracks of Kashmir tomorrow and is scheduled to conclude on August 28. The first convoy of pilgrims was dispatched from Jammu early in the morning under tight security. The Yatra takes place via the traditional 48-kilometer Nunban Pehelgram route in Anantnag district and the shorter 14-kilometer Baltal route in Gandharbal district. The centre has assured full support to Assam in dealing with the recent flood situation. The assurance was given by Union Minister for Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chauhan and Union Minister for Parliamentary Affairs Kiran Rijiju during a flood review meeting with the Assam government in Guwahati last evening. The Union Ministers reviewed the latest flood situation in Assam, including in the worst affected district of Dhemaji, and assessed the preliminary extent of the damage. Assam Chief Secretary Ravi Kota informed the Union Ministers that 13 districts have been affected by this year's first major flood, impacting around 72,000 people. The India Meteorological Department IMD has said southwest monsoon is likely to advance over Delhi, Haryana, Chandigarh, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 days. The Met Department has also forecast heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka, Gujarat, Konkan, Goa and Madhya Maharashtra during the next 2 days. People in Delhi woke up to refreshing showers this morning. Rain lashed several parts of the city, bringing much needed relief from the sweltering heat. The monsoon is advancing rapidly across Madhya Pradesh and is likely to reach the Ujjain and Gwalior Chambal divisions today. Several districts in the Sagar and Bhopal divisions received heavy rainfall yesterday. Waterlogging was reported from many parts of Indore and Mau, where some vehicles were stranded in flooded areas. In Sihor district, continuous rain has led to flood-like conditions in low-lying areas, with water entering several residential colonies. The indirect talks between Iran and the US through mediator concluded in Doha yesterday. According to a statement by the Qatari government, both sides agreed to continue discussions after the funeral ceremonies for Iran's former supreme leader, Ali Khamenei, on 9th of this month. Talking to media, US Vice President J.D. Vance said the Doha negotiations were progressing well, with technical level discussions already underway. He said the next phase would focus on Iran's nuclear program and added that the talks were being held from a position of strength after recent U.S. military action.
8: Well, right now, the technical negotiators are sitting down with the Iranians, with the Qataris, and with others in Doha. You know, talking about some of the details here, making sure commercial traffic really does. It's already started in an amazing direction. We've got now oil at $68. We've got gas prices starting to come down. But really,

والله نسكت عندي مسج كان أيقنا زي مسج يتو بولا لكي ما بتاعي زي بنوي ميس بنوي بوراه تايد غانا ريكوست مانيا زي كنتو I'm so sorry بنوي ميس بنوي أب أبي ريكوست كا تايم نهيه كيوكي يتو دوتشن كورس كا برنامج إسلي نالاس مات هنا كيوكي يه برنامج سون كي أبي آرام سي بيت سكتا هون اور रिक्वेस्ट प्रोग्राम तो होगा लेकिन वो लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा 11:30 से दैट इज फ्रॉम 11:30 ये तो पारा शुरू किया हुआ तो इस टाइम पे अपनी फोन करो पारे फोन करेगी ना अपनी की गाना होने वाले मना से मांगेंगे से कॉल मैं बजाई दी वो अब याद लिखिए जैसे गुड मॉर्निंग एफएम ट्रगोपान फैमिली को ना लाबोदार रेडियो लिसनर्स ग्रुप ग्राम जसवाडी से कोई ना लिखिए जैसे वेल थैंक यू सो मच लाबोदार रेडियो लिसनर्स ग्रुप ग्राम जसवाडी से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर मैसेज और ये थे गुड मॉर्निंग आज नमस्कार लिसनर्स आसे दुर्गेश नगनपुरी राधेश्याम नगनपुरी वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश सुरेश कुमार धक्षे प्रेमलाल वर्मा निकेश धर्मेंद्र ममता बाई वर्मा सुरेश वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा को इन्हें लिखे से वेल थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज ইয়াতে আকৌ লিখি আছে গুড মৰ্ণিং আৰ জে জেকব এভৰি ডে পিপল আৰ কমপ্লেইনিং ইটছ ভেৰি হট বাট অন দ্য অডাৰ চাইড মষ্ট পিপল দে ষ্টে ইন কুলাৰ ফেন এণ্ড এয়াৰ কণ্ডিশ্যন কইনা লিখি আছে ৱাট এবাউট ইউ ফ্ৰম ৰকুভিলে মেটা ফৰ্টমাল দিব পাৰ চমুকি ডিমা ৱেল কমপ্লেইন টু দিছ ইজ এ নেচাৰ অফ হিউমেন বিং লা নেচাৰ আছে ঠাণ্ডা হ'লে বি কমপ্লেইন হ'ব গৰম হ'লে বি কমপ্লেইন হ'ব পানী গিৰিলে বি কমপ্লেইন হ'ব চ' For me, মই এইটো একো কমপ্লেইন নাই আই ফলো ৱাট নেচাৰ ইজ নেচাৰ হিচাপেহে যা আছে চ' এনিৱে থেংক ইউ চ' মাছ ৰকবিলে ফৰ ৰাইটিং এইটো নিচিনা আকৌ শুনি থাকিবি গানাখনটো শুনি কিনে এনজয় কৰি থাকিবি ইয়াতে আকৌ লিখি আছে আৰ জে জেকব চে কবি কবি হামাৰা ৰিকুৱেষ্ট বি প্লে কিয়া কৰো এনাদাৰ লিচনাৰ্ছ কো ছোড়ো জি কুছ মতলব नहीं है दुर्गेश नगनपुरी कोई ना लिखे ऐसे वेल दुर्गेश जी हम आप लोगों का रिक्वेस्ट कभी भी प्ले नहीं किया ऐसा तो नहीं था क्योंकि आप लोग एक ही नंबर पे बहुत सारा रिक्वेस्ट भेजते हैं 9414 ये लास्ट नंबर है आप लोग का तो हमको पता चल गया कि आप लोग एक ही नंबर से बहुत बार रिक्वेस्ट भेजता है क्योंकि नाम अलग अलग लेके तो हम दूसरे लिसनर्स को भी बजाने पड़ता है इसलिए मैं आप लोगों का भी बजा देता है मैंने कभी भी मिस तो नहीं किया इसलिए नाराज मत होना लेकिन एनीवे थैंक यू सो मच जानकारी के लिए वेल नेक्स्ट कहना आपको होने वो अपने लोग के कुमार शानू और सदना सरगम लगा वास्ते फिल्म से मिलन गीत लिखे उसे शमीर म्यूजिक दिया उसे आनंद मिलन

सब खुशी पाई थी कि गुना शक्रिय से दूसरा गीत हुनिया लगो दे त्या महान अब यहाँ तीसरा गाना हुने बोले पाबो और ये तो गाना तो बिशी स्पेशल नजर महान सब खुशी पाई तो ये तो गाना तो कोलाबरेट करे ला गाना से विद मिया सनन लगो दे आफ्टर 20s बैंड मिलीना गाना करे ला गाना से और ये तो गाना ला टाइटल से एसनन याला इतु सबसे फेवरेट गाना मुइला भी फेवरेट आरो इतिया हुनी थगे लिसनर्स कनलाई सबला फेवरेट गाना हो तो लिसनर्स आही मिलिगिना इतु गाना हुनी

0: Well, dia second caller aku IJC tu mana tadi saya keluar atau apa ni kan laga message tu pun I mean tiga lah situ ni lo. Well, hello.
1: Hello, sir.
0: Hello, Sunita.
1: Hello.
0: Mana sih?
1: Bagaimana?
0: Awas pada ni mai.
1: Ya itu yang nak berasa sesuatu begitu dikit yang sudah nyawa. Ini kan hasil ni, sir.
0: Oh, itu. Hasilnya alak-alak time tu, sih. Nampu itu dari luar kan ya hasilnya je.
1: Bukan bukan kuli yang dulu kuli kan hasil, bagaimana sih kan hasil?
0: Oh, itu. Mui program kerja tu, itu mahas tu nolai tu, na itu tu. Apuni lah, misal dari luar kan ya, mui. Apuni nohoy kuar kan ya, mui hasil boleh mula. Kini kan sih, Sunita?
1: Nalas
0: sih. Okay. Aji tu, kintu gana huni boleh mula sih.
1: Tapi
0: दिल है बेताब तू नाइ ने कि वो
1: एक बार सर
0: दिल है बेताब इतु गाना नाइ मैं अपनी एसएमएस भी लिखी कि ना पता ही था इसे
1: मैं तो पहले मुझे तो पिछले तो सर
0: अरे
1: मैं एक तो दिन दिन मैं तमन्ना लिखी सर तमन्ना भी सुना सर दोबारा अपने दिन की बंदा वाला
0: दिल है बेताब तू नाइ दिल है तमन्ना है तू नाइ
1: तमन्ना के नाइ ना
0: दूसरा गाना एक तक कोई दी भी
1: मगर मैं मगर गाना का नाम ही मत कर गाना कंपनी में मालिश लगे गए नहीं थे
0: उसे तू भी होये मोहन भी अपडेट कर बोले तो कोशिश करी है जी क्या बोले भी साफ कमती है जी नहीं क्या दुकाने कर बोले ना पढ़ना
1: जख्मी दिल लगाई थी बोले
0: जी जख्मी
1: दिल
0: जख्मी दिल जेट पर अस्तार से ना जख्मी
1: जख्मी दिल
0: जख्मी दिल ओके ठीक है कुंतु गाना होनी हुई थी दे
1: खुशियों का मौसम
0: ओके मुझे ठीक भाभी था इसलिए तो खुशियों का मौसम गाना भी शी लंबा जिधे लुए सुनीता आधा फुल बजावाना पारे वो
1: दे नहीं
0: फुल फुल नाव नाव जैसे कोई नाव नाव दे कोठा
1: भी ना करे वो सर यार फुल
0: बजे ले मानो तो सुना भी ट्रांसलेट कौन कौन डेटिकेट को बोला से तो
1: डेटिकेट तो मिला सती है दिवासी यहाँ पर ही क्या आंगन में सोंदर ये मंदिर आदि अमन में सोंदर ये माइक निंदा एक और दम था दालों जो आदि मन में सोंदर ही सुनील भांसो
0: ओके
1: आई आखों जो अस्तु अस्तु वाले जमीन सभी वेदर भागु रंग कस्तूमाली अरे जमीन जमीन वैसे अरे आपने किसान
0: ओके थैंक यू तो आपने फोन कर दिया गाने पिछले थैंक्स दे
1: नहीं
0: कुछ होगा कुछ दे दे ओके ओके बाय बाय
1: बाय
0: वेल लिसनर्स का इतना दूसरा गीत होने वाला और तो गीत करने बोगा जान परा सुनीता बसुमती रही ताए फोन कर चे और ताए गाना मंगिया से जख्मी दिल फिल्म परा खुशियों का मौसम इतु गाना बजाय दीवी को ऐसे तो कोई दिया नहीं था कुमार शानू लगा वास्ते होने वाला

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार नमस्कार।
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: ओके भगवान सिंह जी, बताइए कौन से गाना
1: सर
0: सुनने हैं
1: फिल्म
0: आज?
1: का नाम है आजमाइश।
0: आज
1: आजमाइश
0: आजमाइश,
1: जी, और एक गाने के बोल है, अगर मिल जाए तो मैं बता दूंगा आपको।
0: ये फिल्म तो होगा ना? नहीं होगा। आज
1: नहीं है ये।
0: आजमाइश,
1: हाँ आज माइस
0: थोड़ा स्पेलिंग बता देगा इसका?
1: सर, इतनी इंग्लिश इंग्लिश नहीं आती सर मुझको इतनी।
0: आजमाइश।
1: आज माइस और गाने के बोले, कांटा लगे निकल जाए मगर ना निकले नजर का तीर।
0: ओ ये गाना नहीं है हम लोग के पास।
1: जी सर, तो फिर आप सुना दीजिए उसका हीना का, मिल जाएगा। देर ना
0: हिना
1: हो, कहीं देर ना हो जाए।
0: हिना ना?
1: हाँ, ये आपके पास है सर
0: हाँ हिना तो है।
1: जी। इसमें एक गीत है, मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत, सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है,
0: हाँ
1: देर ना हो जाए, कहीं देर
0: सुरेश
1: ना हो जाए।
0: वत्कर और
1: जी जी
0: लता
1: बिल्कुल
0: मंगेशकर
1: सर
0: की आवाज़ में ना? ठीक है
1: जी।
0: बजा देगा।
1: तो
0: ओके
1: गाना थोड़ा बड़ा है, आप थोड़ा छोटा सुना दीजिएगा।
0: ठीक है ठीक है।
1: तो सर मैं आपको अपने
0: मैं
1: दोस्तों
0: देर
1: पर।
0: करता नहीं,
1: हाँ सर
0: मैं देर करता नहीं ना फिल्म गाना का नाम।
1: जी।
0: ओके
1: तो सर मैं अपने दोस्तों को याद कर सकता हूँ।
0: हाँ कर लीजिए कर लीजिए।
1: पहले तो है शिवा लोहट जी हैं, तनुश्री बिटिया हैं, अंजलि भस्मतारी है, रमेश पात्रे हैं, अमल भस्मतारी, विमल भस्मतारी, रमेश प्रजापति जी हैं, पूरन जी हैं, राकेश जी हैं, आशुतोष जी हैं, अभिनाथ जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, केसे सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी, भाईकंड मुंडा जी, गंगाधर सावनकर जी हैं, और हमारे हेलो फरमाइश एकता रेडियो ग्रुप के सुनील झा जी हैं, और तुकाराम जाधव जी हैं, श्रीपाल गोयल जी हैं, योगेश जांगड़े जी हैं। इन सभी को डेलीकेट रहेगा सर, आपको भी डेलीकेट रहेगा।
0: ओके बहुत बहुत धन्यवाद। ओके
1: धन्यवाद सर जी।
0: ओके वेल प्रोग्राम टेको हुनी वो अपना लोके सुरेश वटकर और लता मंगेशकर लगा वास्ते फिल्म से है ना।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते।
0: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जन्नत
1: ओके, आज कौन सी गाना सुनना है आपको?
0: मूवी का सुनवा दीजिएगा।
1: जन्नत, जन्नत तू भी है, जन्नत भी है, लेकिन जन्नत का सुना देगा। ठीक है,
0: जी, जन्नत में कौन कौन से सॉन्ग हैं
1: जन्नत में
0: जी?
1: मैं एक बार देख लेता हूँ।
0: हाँ जी, देखिए। वैसे मौसम कैसा है आपके वहाँ पर?
1: मौसम अभी थोड़ा गर्म हो रहा है, लेकिन बारिश होगा बाद में तो शायद।
0: जी,
1: ओके,
0: यहाँ पर भी
1: जन्नत
0: ऐसा ही हो
1: में
0: रहा है।
1: लंबी जुदाई,
0: हाँ, लंबी जुदाई वाला, लंबी जुदाई वाला ये
1: ऋचा
0: गाना है
1: शर्मा का ना,
0: जी। हाँ
1: क्योंकि मुझे पता है ये आप ये गाना ही अच्छा लगेगा।
0: हाँ
1: ठीक है,
0: जी
1: बजा देगा।
0: जी
1: किसी को डेडिकेट करना है ये गाना?
0: जी हाँ, तनुश्री है। भगवान
1: ओके
0: सिंह जी का भी कॉल आया था।
1: ओके
0: केसरी सिंह राजपूत, सुनील झा भोपाल से, रमेश टेलर जी हैं,
1: ओके ओके
0: और जितने भी लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं उनके लिए, और जिनका कॉल नहीं लगा उनके लिए भी गाना डेडिकेट रहेगा,
1: ठीक है ठीक है।
0: और उसमें सबसे प्रमुख आप रहेंगे
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: जी। मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा है
1: मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको आप से बात करके।
0: जी। आकाशवाणी कोहिमा का मैं नियमित श्रोता हूँ
1: ओके ओके
0: जी, कार्यक्रम भी सुनता हूँ, फोन इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करता हूँ
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: जी।
1: तो ठीक है, बचा देगा तो आराम से सुन लीजिए। ओके
0: जी बिल्कुल, सुन रहे हैं मोबाइल पर आपका कार्यक्रम जी।
1: ओके, थैंक यू, बाय
0: थैंक यू सो मच। ओके बाय।
1: बाय। वेल लिसनर्स का नीचे होनी वो आप लोग के ऋचा शर्मा लगा वास्ते फिल्म से जन्नत।

0: हेलो जगत
1: हेलो।
0: सर, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार। रमेश ने की रमेश पाटन ने की।
0: नहीं सर, मैं FM ट्रेगोमेन का रेगुलर लिसनर दुर्गेश नागनपुरे, ग्राम
1: ओके
0: जसपुर
1: दुर्गेश
0: गिरी,
1: जी,
0: खंडवा,
1: ठीक
0: मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
1: है। ओके दुर्गेश जी, बताइए कैसा है आप।
0: ठीक हूँ सर, ट्राई कर रहा था, फोन लग गया।
1: हाँ, क्योंकि एंगेज रहता है ना, इसलिए फोन ऐसा हो जाता
0: जी
1: है। बोलिए, कौन से गाना
0: सर,
1: सुनने हैं आज आपको।
0: सर आज फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का
1: लाल दुपट्टा,
0: फिल्म से सुन्नी सुन्नी अखियों में जुगनू चमक उठे। जी
1: ओके। लाल दुपट्टा मलमल, सुनी सुनी आँखियों में ना, अनुराधा पटवाल, सुरेश वाडकर
0: जी
1: और
0: जी
1: खोरस का आवाज में ना। ठीक है
0: सर,
1: ठीक है, सुना देगा।
0: जी
1: और आप कैसा है, हालचाल कैसा है आपका।
0: सर ठीक है। हम तो रोज डेली FM ट्रेगोमेन सुनते हैं,
1: हाँ,
0: और
1: आपका तो मैसेज
0: अभी
1: बहुत पढ़ लेता है हम।
0: जी सर, मैसेज क्या में हम ज्यादा लिखते हैं कि थोड़ा कम करना चाहिए?
1: हाँ, क्योंकि एक आप सेम मैसेज में हम लोग को यहाँ जो गेटवे है ना, इधर में
0: जी
1: लाल बन जाता है। एक आदमी का मैसेज सेम मैसेज होने से वो लाल हो जाता है, इसलिए हम लोग का पता चल जाता है कि ये सेम पर्सन ही कर रहा है। क्योंकि
0: जी
1: अलग अलग नाम से आप लोग भेज के भेजता है, जैसा कि
0: जी
1: निमादी बॉय और निमादी बल, निमादी गर्ल, प्रेमलाल वर्मा, ये लोग सब आप लोग का ग्रुप ही है ना, है कि नहीं।
0: हाँ, एक ही ग्रुप में है वो तो, पर अलग अलग करने से वो मैसेज शॉर्ट हो जाता है, और एक मैसेज में फिर भी लंबा मैसेज हो जाता है।
1: इसीलिए बहुत लंबा हो जाता
0: हाँ
1: है, इसीलिए।
0: जी सर, और ठीक है सर, वो हमको डेली सुनते हैं, 2017 से लगातार सुन रहे आपके कार्यक्रम। और
1: हाँ, आप 2017 से तो आप ही पहला लिसनर था, मुझे भी याद है वो तो।
0: जी सर, और सबसे ज्यादा मैं ही FM ट्रेगोमेन सुनता हूँ।
1: ओके,
0: और जी सर,
1: आप क्या करते हैं काम।
0: सर मैं तो म्यूजिशियन हूँ, हारमोनियम प्लेयर, कीबोर्ड सिंथेसाइजर,
1: ओके
0: ये सब
1: ओके, आप पहला भी बताया
0: सुनता
1: था
0: हूँ।
1: ना मुझे।
0: जी सर,
1: हाँ
0: और मेरे पापा राधेश्याम नागनपुरे भी रेडियो टीवी मैकेनिक है,
1: ओके
0: और
1: ओके, ठीक
0: वो भी आपका कार्यक्रम सुनते हैं।
1: है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी को। ओके,
0: जी
1: सो
0: सर,
1: किसको डेडिकेट कर दिया ये गाना आज।
0: ये मेरी फैमिली के लिए, पापा राधेश्याम नागनपुरे,
1: ओके
0: वंदना भावना बिंदु गोलू,
1: ओके
0: कुसुम भाई बाबू दिव्यांश, सूरज कुमार ढाकसे,
1: ओके ओके
0: प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र, मेघा नंदिनी, हर्षिता, ममता
1: ओके
0: भाई वर्मा, सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा। और मेरा एक अभी रेडियो ग्रुप का नाम लंबोदर रेडियो लिसनर्स ग्रुप है,
1: हाँ, ये भी पढ़ रहा
0: और
1: है, मैंने देखा ये भी। हाँ, लंबदार।
0: जी, और जय माता दी रेडियो लिसनर ग्रुप, सुर
1: ओके।
0: रेडियो लिसनर्स ग्रुप, और
1: संपत
0: शपथ रंग
1: सिंह।
0: रेडियो
1: हाँ
0: लिसनर
1: ओके ओके, बहुत बहुत
0: ग्रुप।
1: धन्यवाद। ओके दुर्गेश जी,
0: जी सर, धन्यवाद
1: ओके
0: धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: जी सर, थैंक यू।
1: तो लिसनर्स का नाको हुनी वो आप लोग के अनुराधा पटवाल, सुरेश वाडकर और खरस लगा वास्ते फिल्म से लाल दुपट्टा मलमल का।

0: हेलो।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार।
1: मैं रमेश प्रजापति ग्राम बाया तहसील रघुपति जिला सीहोर एमपी से बोल रहा हूँ।
0: ओके रमेश जी बताइए।
1: बस बढ़िया है सर जी, दुकान में बैठा हूँ, काम कर रहा था।
0: ओके आप
1: कौन? जी,
0: दुकान चलाते हैं ना।
1: मैं कपड़ा खरीदता
0: ओके ओके। अच्छा
1: हूँ जी। बेटा
0: आज कौन सी गाना सुनना है, कौन सी फिल्म का?
1: फिल्म है क्या?
0: बेटा
1: हाँ
0: बेटा तो होगा जैसा लगता है। हाँ बेटा है।
1: कौन सी तेरी बोली कुकु कुकु।
0: ओके ये बजाएगा तब तो। अनुराधा पटवाल और उदित नारायण का आवाज में ना। ओके बजा देगा। ठीक है।
1: जी, कुछ दोस्तों को याद कर लो। सबसे
0: हाँ
1: पहले तो आप
0: ओके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारी तनुश्री बिटिया
0: हाँ
1: है, और रिक्कू बिने मेहता
0: ओके
1: है, रमेश पात्रे जी है, और
0: ओके
1: गोल्डी जी है, अमन भस्माकारी है, विमल भस्माकारी है, शिवा है, दीपिका से, राकेश जी है, शिमला से, अविनाश जी है, पूनम जी है, कानपुर से, पूर्णिमा जी है, संगीता जी है, आशुतोष जी है, लोकेन वर्मा जी है, उज्जैन से, धर्मवीर है, दिल्ली से, प्रेम सिंह सिसोदिया है, मांगीलाल चंदेल है, और केसी सिंह राजपूत है, गगरा सिंह लोधी है, पूरन वर्मा है, भगवान सिंह परमार जी है। जी
0: ओके बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके
1: जी धन्यवाद, थैंक
0: थैंक यू।
1: यू।
0: वायरलेसनर्स का नाकू हुनी वो अनुराधा पटवाल और उदित नारायण लगा वास्ते फिल्म से बेटा।

0: हेलो।
1: हेलो सर जी, को राधे राधे। केसरी
0: हाँ राधे राधे।
1: सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, बैरसिया जिला भोपाल उत्तर प्रदेश से।
0: ओके जी, बताइए कौन से फिल्म का गाना सुनना है आज?
1: आज सुनवा दीजिए आप, उनका नाम रहेगा भीगी पलके।
0: भीगी
1: पलके?
0: भीगी पलके
1: जी
0: फिल्म का नाम है ये?
1: हाँ जी।
0: भीगी रात तो है लेकिन भीगी पल के ये फिल्म तो नहीं है।
1: भीगी रात में कौन से गाने हैं?
0: दिल जो ना कहे सका।
1: हाँ ये सुनवा दीजिएगा, दिल जो ना कहे सका।
0: मोहम्मद मोहम्मद रफी का है ये?
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
0: ठीक है, सुना देगा।
1: दो चार मित्रों को याद करना चाहेंगे।
0: हाँ याद कर लीजिए।
1: रामबाबू शर्मा जी हैं, गजराज लोधी जी, भगवान सिंह परमार जी, मांगीलाल चंदेल जी, रमेश प्रजापति जी, अमल भस्मतारी जी, विमल भस्मतारी जी, और जितने भी लाइव सुन रहे सबके लिए रहेगा सर।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके
1: थैंक यू थैंक यू
0: थैंक यू। लिसनर्स का नको हुनी वो अपना लोके मोहम्मद रफी लगा हुआ फिल्म से भीगी रात।

0: हेलो
1: जय माता जी।
0: जी। माता जी,
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान
0: ओके।
1: गांव का नाम अंतनल बुगला से। जी
0: अंतनल बोला कही।
1: सर,
0: ओके।
1: बारिश हो रही है, कैसे हो सर आप?
0: बारिश तो होना जैसा है। शाम अभी तो थोड़ा दिन गर्म है, मतलब ह्यूमिडिटी है अभी। घाम तो निकला था एक बार शाम तो, लेकिन अभी
1: जी सर,
0: तो
1: इधर तो सुबह बारिश हो रही है सर।
0: ओके। बहुत गर्म होगा उधर में तो।
1: हाँ नहीं, अभी गर्म तो था, पर अब जैसे बारिश का मौसम हो जाता है ना तो फिर ठंडी हवा चल जाती है सर, ठंड हो जाती है राजस्थान में। बढ़िया
0: ओके ओके ओके ओके।
1: जी जी
0: सो पुरन जी, आज कौन से गाना सुनना है, किस मूवी का?
1: सर, मैं आज सुनना चाहूंगा, आपके पास देख लो अगर मूवी मिल जाए तो, जमाना दीवाना।
0: जमाना दीवाना। जमाना दीवाना, ये तो नहीं है जमाना दीवाना तो।
1: नहीं है
0: हाँ, जमाना दीवाना नहीं है।
1: तो फिर फिल्म का नाम रहेगा बेवफा सनम। जी
0: बेवफा सनम ना। बेवफा सनम।
1: जी
0: हाँ, कौन से गाना सुनना है इसमें?
1: इसमें एक गाना है क्या, मुझको ये तेरी बेवफाई मार डालेगी,
0: ये गाना तो नहीं है।
1: तो कौन कौन से गाने सर इसमें?
0: वफा न रास आए तुझे ओ हस हर जाए,
1: जी
0: अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का,
1: जी
0: ओ दिल तोड़ के हस्ती हो मेरा,
1: जी
0: जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, और ये धोखा प्यार की धोखा, जिंदगी बस सजना दा प्यार, तेरी गली विचो लगेगा जना जरा जा ना जा जादू। इतना
1: जी
0: है, कौन से गाना सुनना है, क्योंकि समय भी
1: चलो,
0: चल रहा है अभी।
1: हाँ चलो फिर ठीक है, भाई ये गाना सुना दीजिए, ये धोखे प्यार के धोखे, किसी से कोई प्यार ना करे,
0: कौन बोला?
1: किसी से कोई प्यार ना करे, धोखे प्यार के धोखे। हाँ
0: धोखे प्यार, धोखे प्यार, ये धोखे प्यार।
1: जी हाँ, धोखे प्यार के है ना, किसी से कोई प्यार ना करे।
0: ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। सोनू
1: देखो
0: निगम का आवाज में
1: क्या,
0: ना।
1: हाँ सोनू निगम की आवाज है, क्योंकि कोई माँ से समझौता वैसे सारे प्यार करते हैं सर।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ
1: अब सबसे पहले तो क्योंकि आखिरी कॉल है तो टाइम भी जा रहा है, तो मैं सबसे पहले आपको सुनाना चाहता हूँ,
0: ओके।
1: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, रमेश पात्रे है, विमल अमल और अंजलि है, और जितने भी कार्यक्रम के लाइव कॉलर सुनने वाले जो पहले से लेकर अभी तक, क्योंकि आपका कार्यक्रम भी मैं थोड़ी देर पहले से सुनने लगा था क्योंकि लाइट नहीं थी सर मेरे
0: ओके
1: अभी।
0: ओके ओके, ठीक है ठीक
1: थैंक
0: है।
1: यू सर, थैंक
0: थैंक यू, बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक
1: यू सर।
0: यू थैंक यू। वेल लिसनर्स, कैन प्रोग्राम शेष कुबले टाइम हुई से तो कने प्रोग्राम शेष तो होने पर आप लोग की सोनू निगम लगा आवाज थे फिल्म से बेवफा सनम। और तो गीत लोगों थे प्रोग्राम तो शेष कर होबो, किंतु हमारे 1 बजे हुआ लोग अपनी गान हुनिया होबो FM रेनबो रिले प्रोग्राम। और FM ट्रेको पान तो आपको शाम 3 बजे पर शुरू कर होबो। আকৌ মই আপুনি গানকে লগ কৰি হ'ব অহাকালি ৰাতি 6 বজাৰ পৰা। চ' আপুনি গান সবকে থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ইয়'ৰ ফৰ টিউনিং এণ্ড থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ কলিং। আপুনি গান কল কৰি দিয়াৰ কাৰণে বি থেংক ইউ কৈনে জনাই দি আছে। বহুত বহুত ধন্যবাদ সবিকো ফৰ ইয়'ৰ কল এণ্ড ফৰ টিউনিং। ত' উইচিং ইউ অল ওৱান্স এগেইন এ ভেৰি গুড আফটাৰনুন এণ্ড হেভ এ নাইচ ডে'।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री शिनाए ताकायशी के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उनके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश परवथानेनी ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली सचिवालय में ग्रीन ड्राइव पोर्टल का शुभारंभ किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में भगवती नगर यात्री आवास आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइलों के हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। और खेलों में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। अगला मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 के मैच में अमेरिका ने बोस्निया हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। उधर बेल्जियम ने शानदार वापसी करते हुए सेनेगल को और इंग्लैंड ने कांगो को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की है। डूरंड कप फुटबॉल के 135वें संस्करण की शुरुआत इस महीने की 25 तारीख को कोलकाता से होगी। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप और आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार, उसका क्या है नाम? जी हाँ, मेरा वाला सॉन्ग। और मेरा वाला सॉन्ग में मैं हूँ बबीता रावत, आपके साथ आपकी पसंदीदा गीतों को सुनाने के लिए मैं हूँ तैयार। और आप भेजिए हमें अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट 9868107070 पर आप भेज सकते हैं अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट और एक से बढ़कर एक गीतों की फरमाइश कीजिए, मैं मजबूर हो जाऊं आज आपके पसंद के गीत को बजाने के लिए। फिलहाल अभी क्योंकि मौसम थोड़ा सा टिप टिप वाला है तो फिर क्यों ना यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आई है हमारे पास, किसने की है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, इन्होंने ये फरमाइश की है कि ये मोहरा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, तो चलिए आपके लिए। हाँ जी, टिप टिप टिप टिप पानी बरसने लगा है और होप सो कि बरसात का जो मौसम है वो अब शुरू हो जाए और ताकि जो दिल्ली वाले हैं या दिल्ली NCR वाले हैं उन्हें थोड़ी सी राहत मिले गर्मी से।

मैम आपको मेरा प्यार भरा सलाम, कैसी हो? प्लीज मेरा सॉन्ग प्ले जरूर कीजिएगा, बॉर्डर मूवी का, मोहम्मद कासिम, कीरतपुर जिला बिजनौर से इन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो चलिए अब आपके पसंद के गाने को हम प्ले करते हैं यहाँ पर।

हाँ जी, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी सॉन्ग रिक्वेस्ट हमारे पास आ रखी हैं और ऐसे में हम क्या है मजबूर, क्यों ना हो मजबूर, क्योंकि एक से बढ़कर एक सॉन्ग रिक्वेस्ट है और ऐसे में किसकी सॉन्ग रिक्वेस्ट को छोड़ें और किसे प्ले करने, थोड़ा कन्फ्यूजन तो हो ही जाता है। चलिए फिर भी एक प्यारा सा गीत अमरदीप कुमार कुप्पम पट्टी जलकंडापुरम सेलम तमिलनाडु से इन्होंने फरमाइश की है, फिर तेरी कहानी याद आएगा ये गीत। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इस गीत को सुनने के और ये मेरा बहुत वन ऑफ द फेवरेट कह सकते हैं गीत है। तो आप इंजॉय कीजिए इस गीत को और हम देखते हैं कि अगला गीत हम किसका बजाने वाले हैं। आप भी देखिए और सुनिए बहुत ध्यान से। आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग, मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: जी हाँ दोस्तों, गांव के जीवन में तालाब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न जलीय पौधों और जानवरों के आवास के रूप में काम करके जैव विविधता का समर्थन करते हैं। ग्रामीण अक्सर मछली पकड़ने के लिए तालाबों का उपयोग करते हैं, जो उनके भोजन की आपूर्ति और अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। तालाबों को पुनर्जीवन दें, इन्हें खत्म न होने दें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग, और मेरे वाला सॉन्ग में अब जो सॉन्ग रिक्वेस्ट हम प्ले करने वाले हैं, भाई बारिश का माहौल हो रहा है और पर्वतों में काली घटा टकरा रही है, तो मुझे समझ में आना चाहिए या आपको समझ में आना चाहिए कि अगला गाना किस की पसंद का बजने वाला है। जी हाँ, अगला सॉन्ग जो हम प्ले करने वाले हैं वो है चांदनी फिल्म का, और किसने सॉन्ग रिक्वेस्ट ये कही है, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, इन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है। तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत

नौशाद चौधरी, अलीफिया इनकी बेटी, और सन अक्रम, इमराना इनकी वाइफ, राजीव नगर, मंडोली, दिल्ली 93 से रिक्वेस्ट करते हैं इस गाने की, जो है मेला फिल्म से।

0: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ बबिता रावत आपके साथ, और साथ ही साथ मेरा वाला सॉन्ग में आपका है हमारा साथ और हमारा आपका साथ मैसेजेस के द्वारा है 9868107070 पर आप अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हम प्ले करेंगे यहाँ पर आपके पसंद के गीत। और अभी जो गाना हम प्ले करने वाले हैं वो राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र जी की रिक्वेस्ट पर है, और उन्होंने ऐसा भी कुछ लिखा है अजीज बर्थ एनिवर्सरी, क्या उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, और एक अद्भुत सॉन्ग है ना, तो प्लीज इसे प्ले कीजिए। तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत खुदगर्ज मूवी से।

0: भाई दिन तो हमारा भी बन जाता है जब आपको हमें मैसेजेस के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, और कोशिश यही रहती है हमारी कि हम आपके सारे मैसेजेस पढ़े, पर क्या करें, समय का तकाजा है, सारी रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो सकती, पर जितनी भी हो सकती है हम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया है, किसका? यहाँ पर आया है हमारे पास मैसेज सलीम जसपुर उत्तराखंड से, इन्होंने रिक्वेस्ट की है इस गाने की, जो है
1: तो जन्नत मेरी तू ही मेरा
0: रब ने बना दी जोड़ी। जी हाँ, रब ने बना दी जोड़ी का ये गाना।

0: नरेंद्र सोनी देवीगढ़ से पटियाला से रिक्वेस्ट करते हैं चांदनी फिल्म के गीत का, लेकिन चांदनी का एक गाना तो हमने चला दिया है ना, चलिए आपका नाम ले लिया उसी गाने के साथ, समझ लीजिए कि आपकी भी रिक्वेस्ट पूरी हो गई। और वैसे यहाँ पर एक और हमारे पास मैसेज आया है, किसका मैसेज है ये, गुड्डू दाकर जी का, बेड़ावन गाँव उज्जैन जिले से बोलते हैं ये, कि दोस्तों के गाने इंजॉय करता हूँ, किसी भी दोस्त की फरमाइश पूरी होती है तो मैं खुश हो जाता हूँ। भाई देखिए ना कितनी अच्छी विचारधारा है इनकी, कि दूसरे की रिक्वेस्ट पूरी हो गई तो समझते हैं कि इनकी भी रिक्वेस्ट पूरी हो गई। यहाँ पर सौरभ अरनेजा जी का गाजियाबाद से मैसेज आता है, लिखते हैं, दोस्त मेरी कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन आप किसी भी शो में सारे इंजॉय करते हैं शो, और देखिए इनका नाम भी आ गया। आप देखिए ना कितने लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं जो कहते हैं कि हाँ हम दूसरों की खुशी में खुश हैं। तो चलिए सबकी खुशी में खुश हुआ जाए, अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए और उसके बाद वापस आते हैं ब्रेक के बाद, अब देखते हैं किसकी सॉन्ग रिक्वेस्ट पूरी होती है।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो पार्सल हो सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी, बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन।
5: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
6: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
7: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
8: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
9: आज की रात मजा,
8: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
7: म्यूजिक मस्ती।
10: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
11: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
7: म्यूजिक मस्ती।
12: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
13: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
14: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ, प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग, और मेरा वाला सॉन्ग में अब फिर से चलने वाली है सावन की कहानी। जी हाँ, सावन के झूलों ने मुझको झुलाया और मैं परदेसी घर वापस आया। बहुत सारे घर ऐसे ही बुला रहे हैं अपने परदेसी लोगों को, और अपने घर पर मोहम्मद अजीज की आवाज में। किस फिल्म का गाना है ये? ये है निगाहें फिल्म का गाना। किसने रिक्वेस्ट की है? राजेश कुमार चौहान जालंधर से इन्होंने रिक्वेस्ट की है। अब देखिए इनकी पसंद का गीत हम चला रहे हैं, तो प्लीज प्लीज प्लीज आप गुस्सा मत होइए। मेरे पास निम्बाराम गोदार बिरलोका नागौर राजस्थान से लिखते हैं कि बिना बरसात के हमें ये गाने अच्छे नहीं लग रहे हैं, बरसात भेजो नहीं तो हमारी फसलें जल रही हैं और हम मर रहे हैं। देखिए कोशिश तो हमारी ये रहेगी, क्या पता इन गीतों के ही सहारे वहाँ पर भी पानी बरस जाए। और कभी कभी होता ना कि गीत ऐसे राग लगाए जाते हैं जिसकी वजह से बारिश भी होने लगती है। तो चलिए सुनिए इन गीतों को, एंजॉय कीजिए, और ईश्वर से हमारी यही कामना है कि इस बार धरती कहीं भी सूखी ना रहे, हर कहीं जो हरी हरी फसलें हैं वो लहलहाएं और खूबसूरत हरियाली पूरी धरती पर बिखरे।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी रेनबो का ये वाला जो सॉन्ग मैं बजाने वाली हूँ, मेरा वाला सॉन्ग, मेरी लास्ट सॉन्ग है। और सॉन्ग रिक्वेस्ट किसने भेजी है, ये किशन वंजानी, नीलम किशु, स्वाति, रेलवे कॉलोनी, आनंद विहार से इनकी रिक्वेस्ट आई है बाजीगर गीत के लिए। लेकिन अगले प्रोग्राम की जानकारी भी मैं आपको देती चलूँ। एसएम शाहिद होंगे आपके साथ अगले प्रोग्राम में प्रेजेंटर, और साथ ही साथ आशियाना प्रोग्राम में अ स्पेशल इंटरव्यू विद के टंडन, फॉर्मर अनाउंसर, AIR जर्नलिस्ट एंड फिल्म पर्सनालिटी। इनके साथ जुड़िए और मुझे दीजिए इजाजत। मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर किसी दिन किसी रोज इसी मोड़ पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: आकाशवाणी। ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम आशियाना में आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं, आकाशवाणी से उनका नाता बड़ा गहरा, बहुत पुराना और बेहद खास रहा है। 22 साल तक इन्होंने आकाशवाणी में अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के तौर पर अपनी सेवाएं दी और उसके बाद 13 साल तक यूके लंदन में जर्नलिस्ट और ब्रॉडकास्टर के तौर पर बीबीसी हिंदी सर्विसेज में काम किया। उसके बाद यूके में ही अपनी थिएटर कंपनी थिएटर ग्रुप फॉर्म किया और हिंदी इंग्लिश के साथ साथ पंजाबी और गुजराती में कितने ही प्लेज लिखे, एक्ट भी किया और डायरेक्ट भी किए। इतना ही नहीं, इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए। हाल ही में एक वेब सीरीज में इंपॉर्टेंट रोल भी की रोल भी प्ले किया। इंटरनेशनल फिल्म और टीवी प्रोजेक्ट्स में काम किया। दो किताबें उर्दू गजल की भी लिख चुके हैं और इसी साल अपनी मेमोयर ऑटोबायोग्राफी चेजिंग केओस भी रिलीज कर चुके हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस आवर स्पेशल गेस्ट। प्लीज वेलकम द मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फैसेटेड, डायनेमिक राइटर, एक्टर, डायरेक्टर श्री के टंडन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सामाइन, आपने मुझे यहाँ बुलाया। शाहिद साहब, मैं बहुत ही तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ।
0: सर बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने अपना समय निकाला, अपना कीमती वक्त निकाला और चूंकि आप आकाशवाणी से ही जुड़े रहे हैं, आपके करियर की शुरुआत आकाशवाणी से हुई, तो वापसी मैं ये जानना चाहूंगा शुरुआत करते ही कि कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप?
1: बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत एक फीलिंग आ रही है। मैं अपने एक मित्र जो यहाँ तशरीफ़ फरमाए उनसे बोल रहा था कि मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। शायद ये किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर मैं करता हूँ तो मेरे अंदर एक अजीब सा, जैसे बोलते हैं ना, बटरफ्लाइज चलने लगते हैं।
0: जी,
1: और ये मेरी कर्मभूमि रही है 22-23 साल और इसे मैं कभी भूल नहीं सकता। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का कि मुझे आपने एक बार फिर मौका दिया है यहाँ आकर अपने सामने से बात करने का।
0: जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। और आपकी आवाज़, आपका अंदाज वही बताता है कि जो हम भी सबको बताते हैं कि एज ए ब्रॉडकास्टर आपका जो अंदाज है वो वही है जो बहुत ही खूबसूरती के साथ पहचान बनता है हमारे आकाशवाणी के साथ। तो सर, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे और एक गाना प्ले करेंगे, उसके बाद आकर के आपसे बातचीत का सिलसिला करेंगे शुरू। 102.6 आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन, आपका अपना रेडियो रेनबो। शाहिद आपके साथ और आज के आशियाना में हमारे खास मेहमान हैं हमारे स्पेशल गेस्ट के टंडन, जो बॉलीवुड, टीवी, रेडियो, जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट, राइटर, डायरेक्टर, मल्टी टैलेंटेड शख्सियत आज हमारे साथ। आप बने रहें हमारे साथ।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना, और आज के आशियाना में हमारे बहुत ही खास स्पेशल गेस्ट हैं के टंडन साहब। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका आकाशवाणी में।
1: धन्यवाद आपका।
0: सर हमने जैसे शुरुआत करी, हमने बताया कि आपका करियर 22 साल आपने दिए हैं आकाशवाणी को एज एन अनाउंसर और डेमो आर्टिस्ट, उसके बाद तो फिर आपका जो सफर शुरू हुआ है तो वो फिर आगे बढ़ता चला गया और बुलंदियों को, मंजिलों को, नई नई और ऊंचाइयों को हासिल करता गया, तो ये सफर कैसा रहा सर?
1: ये सफर बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत कुछ सीखा। और यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर मेरा ये सफ़र लचीला भी रहा, टफ भी रहा, आसान भी रहा
0: जी,
1: लेकिन अगर जो कुछ भी मैंने आज किया वो आकाशवाणी की वजह से है।
0: वाह।
1: जो कुछ भी आज मैं हूँ, जो थोड़ा बहुत कुछ लिखता हूँ या बोलता हूँ
0: जी,
1: ये सब इस आकाशवाणी की देन है। बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल भी अपने आप को हटा नहीं सकता
0: जी,
1: और मैं हर पल हर दम इस चीज को याद रखता हूं कि मैं कभी आकाशवाणी में काम किया करता था
0: जी। तो 22

0: साल का इतना लंबा समय जो आपका गुजरा, तो सर कुछ यादें भी रही होंगी?
1: जी हाँ, बहुत यादें हैं। और ये यादें जो आपने अभी जिक्र किया मेरी ऑटोबायोग्राफी में,
0: जी
1: उसमें बिल्कुल बहुत ही तफसील से हैं।
0: अच्छा,
1: क्षमा चाहूंगा। और क्योंकि आकाशवाणी एक ऐसा चैप्टर है मेरी जिंदगी का
0: जी,
1: तो उसको तो मैं इग्नोर कर ही नहीं सकता था। और वो कुछ सफर, जैसे युवावाणी ज्वाइन किया 72 में, फेल हो गए ऑडिशन में,
0: अच्छा
1: फिर पास हुए, फिर आगे बढ़ते रहे, फिर ESD एक्सटर्नल सर्विसेज ज्वाइन किया, ड्रामा अनाउंसमेंट, फिर दिल्ली स्टेशन, फिर विविध भारती। आप मानेंगे नहीं, रोज सुबह
0: जी
1: इन जनरल मैं आमतौर पर जब उठता हूं, तो अब तो खैर रेडियो मैं सुनता नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट
0: जी,
1: और यूके में ये रेडियो नहीं आता, वहां का रेडियो सुनना इज लाइक मेरे लिए कुछ अजीब सी बात है, मतलब मुझे अजीब सा लगता है, वेरी लाउड। तो मैं रोज सुबह ये जरूर बोलता हूँ, ये आकाशवाणी दिल्ली है, मीडियम वेव 219 मीटर, 1368 किलोहर्ट्ज़ पर, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
0: क्या बात।
1: तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को रवां कर रहा हूँ
0: जी,
1: कि शायद मुझे कभी मौका मिल जाए फिर करने का। तो ये मेरा हाल है, आप सोच सकते हैं
0: जी। और सर, जैसे आपने अभी वो इंट्रो दिया न्यूज वाला, तो वो आपको फिर से वो मौका मिला और आप वो कह पाए आज हमारे इस लाइव शो में?
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसे मैं छोड़ नहीं सकता था
0: जी। तो सर, आपकी इतनी ज्यादा जो है, मतलब जैसे मैंने कहा कि मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी आपकी, आपने मतलब एज ए ब्रॉडकास्टर शुरुआत करी और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले गए, फिर आपने ड्रामा सेक्शन में काम किया काफी लंबे समय, और फिर आप सीधे गए यूके
1: जी,
0: और आप लंदन पहुंचे और इतना लंबा आपने समय दिया BBC हिंदी सर्विसेज को, 13 साल
1: जी।
0: तो वो सर कैसा था एक्सपीरियंस?
1: वो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था, लेकिन मैं अगर आपको ये कहूं तो बिल्कुल ही आकाशवाणी से मुख्तलिफ था।
0: अच्छा,
1: क्योंकि यहां पर हम लोग क्रिएटिव थे
0: जी,
1: स्क्रिप्ट लिख रहे हैं अपने ढंग से, रिकॉर्ड ला रहे हैं अपने ढंग से, उसको बजा रहे हैं, उसको क्यू कर रहे हैं
0: जी,
1: तो शायद वो सिस्टम नहीं
0: बिल्कुल,
1: तो वो एक बहुत ही, जैसे बोलते ना हम लोग, हमें लगता था कि हम बहुत उम्दा काम कर रहे हैं
0: जी,
1: इधर टेप चल रही है, कोई हेडफोन नहीं, कोई कुछ नहीं, इधर रिकॉर्ड चल रहे हैं, उसको क्यू कर रहे हैं,
0: हाथ से
1: फिर इतने में अनाउंसर न्यूज रीडर आ गए, तो ये जो हमारी क्रिएटिविटी थी ना
0: जी,
1: हमें लाइव रखती थी। वहां ये सब नहीं था, वहां बिल्कुल ऐसे था जैसे मैं और आप हैं।
0: अच्छा,
1: मतलब सारा तैयार टेबल पर,
0: अच्छा
1: कंट्रोल है, माइक आपके हाथ में
0: जी,
1: और हम क्यू ऐसे मिल रहा है, रेड लाइट आ रही है और हम लोग बोल रहे हैं
0: जी।
1: तो वहां मुझे थोड़ा सा, देखिए BBC ज्वाइन करना हर एक का सपना होता है अगर आप ब्रॉडकास्टर हैं,
0: बिल्कुल जी,
1: तो आपकी जैसे बोलते हम, जैसे थिएटर के लोग हैं जो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्रीज आर लास्ट एम
0: जी जी जी, बिल्कुल
1: इसी तरह ब्रॉडकास्टर के लिए BBC। और BBC की अहमियत मेरी जिंदगी में तब आई जब इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ
0: जी,
1: क्योंकि उस दिन मैं अनाउंसर था ड्यूटी पर,
0: ओके
1: और हमें टोन डाउन करने को बोला, तो मैं बड़ा हैरान था, मैंने कहा क्यों भाई, और देयर वाज नो न्यूज, कोई खबर नहीं थी कि क्या हो गया है देश में
0: जी।
1: जब शाम को पता लगा, तो पता लगा BBC ने ये न्यूज जारी की है कि ऐसा ऐसा हो गया
0: जी,
1: वहां से एक अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी आई कि यार ये BBC क्या है, हम लोग खामोश हैं
0: जी,
1: और BBC ने दुनिया भर में खबर दे दी कि ऐसा हो गया, बस वहां से शुरू हो गया कि भाई पूरा मतलब नहीं पता था BBC का
0: जी,
1: BBC क्या है
0: जी,
1: लेकिन ये सोचते थे कि इनके जो रिपोर्टर्स हैं क्या वो दुनिया के कोने कोने में बसे हैं, कहीं छिपे हुए हैं, जैसे एक होता ना एक्साइटमेंट से
0: जी,
1: कि जैसे कण कण में बसे हुए हैं और हमें देख रहे हैं कहां क्या हो रहा है, तो दैट वाज द थिंग।
0: ओके सर, आपने फिर उसके साथ साथ वहां पर अपना थिएटर ग्रुप, थिएटर कंपनी भी स्टार्ट कर दी, लॉन्च कर दी, उसमें आपने प्लेज लिखे भी हैं, उनको डायरेक्ट भी किया है और उनमें एक्ट भी किया, और वो भी बड़ा लंबा आपका वो जर्नी रहा, तो वो किस तरीके का रहा और क्या अभी भी वो एस्टैब्लिश्ड है, अभी भी चल रहा है थिएटर?
1: हाँ, मेरी थिएटर कंपनी अभी भी चल रही है, लेकिन अफसोस ये है कि कोविड के बाद थोड़ा सा डाई डाउन हो गया है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हम लोग वहां पे यूके में एक आर्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, तो हम लोग साल में 2 प्ले किया करते थे एक साल में, जिसके लिए यूके गवर्नमेंट ग्रांट देती थी।
0: ओके,
1: जैसे फिल्म कमीशन हो गया और लोकल काउंसिल्स हो गई, कभी £10,000 सालाना, कभी £15,000 सालाना, तो अब वो कोविड के बाद बिल्कुल खत्म हो गया है।
0: अच्छा,
1: तो हम जैसे लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो एक तरह से जंग लग गया उसको।
0: तो सर, वहां जो आर्टिस्ट थे जिनके साथ आपने काम किया, क्योंकि आपने मल्टी लैंग्वेज वहां पर प्लेज किए हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश के अलावा आपने पंजाबी और गुजराती में भी ब्लेज किए, तो वो आर्टिस्ट वहां पर होते हैं या आपने
1: अपने? बिल्कुल आर्टिस्ट होते हैं।
0: अच्छा।
1: इस वक्त मैं आपको बताऊं, यूके में गुजराती थिएटर इज थ्राइविंग द मोस्ट।
0: अच्छा,
1: वो इतना प्रचलित है कि हम उसको छू नहीं सकते।
0: ओके,
1: हिंदी थिएटर जो है, लोग कहते हैं कि छोड़ो यार फिल्म देख लेते ना, हिंदी थिएटर कहाँ जाना देख लेते, 20 pound का टिकट है,
0: 20 pound का,
1: हाँ, और 8 pound के टिकट में उसमें अक्षय कुमार है, सैफ अली खान है, जी है। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं जाता हूँ अपने दोस्तों को बताने के लिए मेरा प्ले है, टंडन तेरा प्ले, हम टिकट लेके आएंगे, पास दे देना भाभी का, मेरा, बच्चों का, तो यहाँ हम लोग मार खा जाते हैं।
0: जी सर, आपने बॉलीवुड का जिक्र कर दिया है बीच में, मैं चाहता था कि उसके बारे में बाद में बात करूं, लेकिन अब जब जिक्र आ गया तो मैं पूछूंगा सर, बॉलीवुड में आपने जब एंट्री की तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो क्या क्या क्या आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या आपके पास ऑफर बैठे बिठाया आया, और मूवीज कौन कौन सी की आपने?
1: ऑफर तो खैर बैठे बैठे ही आया था
0: जी,
1: क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बॉलीवुड जाऊंगा, बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी विद व्हाट आई वॉज डूइंग। 2014 की बात है, बॉम्बे के एक बहुत नामी हैं मुकेश छावड़ा
0: जी,
1: यूके में टूर कर रहे थे कास्टिंग के लिए, तो किसी ने मेरा जिक्र कर दिया कि भाई अच्छा बंदा है, अच्छा बोल लेता है थोड़ा बहुत, तो ही कॉल्ड मी।
0: अच्छा नहीं सर, बहुत अच्छा।
1: तो उन्होंने मुझे जब बुलाया तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मैं कि मुझसे होता नहीं है ऑडिशन, कैसे देना है, क्या परफॉर्म करना है, बिकॉज आई वाज नॉट इनटू दैट। यहाँ टेलीविजन में थिएटर किया, सॉरी टेलीविजन किया, थिएटर किया मंडी हाउस
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा नहीं सर ये करेक्टर है आपको करना है एंड इट सूट्स टू यू, तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। मेरा गला खराब है पता नहीं, वो थी शानदार,
0: ओके,
1: आलिया भट्ट,
0: आलिया भट्ट, शाहिद कपूर, ओके,
1: पंकज कपूर, वहां से जर्नी शुरू हो गई,
0: ओके,
1: ये फील बदी जिसे बोलते हैं ना, वहां से ये हो गया, तो आई नेवर लुक बैक,
0: ओके। उसके बाद फिर मल्टीपल आपके फिर ऑफर्स आते रहे, आपने अक्षय कुमार के साथ भी काम किया, बेल बॉटम में भी आपने रोल किया, और अभी हाल ही में भी आपने कुछ फिल्में की हैं।
1: जी हाल ही में मेरी 3 फिल्में मैंने पंजाबी की हैं
0: जी,
1: जो कि मैं लंदन से ट्रेवल कर रहा था इंडिया, और ये रिसेंट इज माय नेटफ्लिक्स की सीरीज तस्करी,
0: जी जी जी,
1: और मैं फिर किसी एक प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूँ मुंबई, सो
0: अच्छा,
1: दैट्स
0: ये जर्नी भी जारी है
1: जी।
0: और सर इतना मैं ये अपने आप से मतलब मैं जानने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था मैं जब तक आपसे बात नहीं हुई थी, इतनी सब चीजें सर आप एक साथ कैसे मैनेज कर पाते हैं, इतना सब कुछ, आप राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, पोएट, और मतलब मैंने जैसे कहा, तो कैसे आप ये सब मैनेज कर रहे हैं सर, और फिर बॉलीवुड के लिए तो डेडिकेटेड टाइम देना होता है।
1: जी हाँ, लेकिन हम लोग कोई इस तरह का रोल नहीं करते कि हम लोग दिन रात उसी में लगे हुए हैं
0: जी,
1: बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए सेकेंड लाइन एक्टर
0: जी,
1: मतलब सीनियर, चाचा बन गए, ताऊ बन गए, हम लोग हीरो तो है नहीं
0: जी जी,
1: लेकिन जो मेरा मेन है जो वो है थिएटर और लिखना
0: जी,
1: लिखता रहा हूं मैं गजलें आकाशवाणी के टाइम से,
0: अच्छा,
1: लेकिन कभी मौका नहीं मिला यहां उन्हें शाया करवाने का,
0: लेकिन आपने सर उसको पब्लिश किया और बाकायदा रिलीज हुई है बुक
1: जी फेर। जी, तो ये अंग्रेजी जो मेरी बुक है, मेरी जो बायोग्राफी है, इस पर मैंने 5 साल काम किया है,
0: ओके,
1: ड्यूरिंग ऑल माय ट्रिप टू इंडिया एंड एवरीवेयर, क्योंकि ये मेरा एक सपना था कि मैं अपने बच्चों को कुछ ऐसा लेगेसी देके जाऊं जो मेरे बारे में जाने, वो वहां के बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, उनको कुछ नहीं मालूम
0: जी,
1: सो दिस आई ब्रॉट इन द मार्केट जस्ट फॉर देम
0: जी। और सर इसके अलावा एक और भी चीज़ है जो मैंने आपके बारे में ढूंढ करके निकाली, बहुत कम लोग जानते होंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन मैं बताऊंगा वो इस खूबसूरत गाने के बाद। मोहम्मद रफी का ये गाना है, मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूं और वापस आता हूं और आपसे बातचीत जारी करता हूं। आप सुन रहे हैं आशियाना शाहिद के साथ, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं के टंडन साहब।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
5: पता का चाय, गजब का स्वाद।
6: पानी पानी पानी, पानी से जीवन हमारा, कैसे बचाएं इसको मिलकर सोचे जरा। पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए। दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, हमारे तालाबों को बचाना है, तालाबों की रखरखाव की जिम्मेदारी लें, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो
7: 102.6। ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम आशियाना। आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं के टंडन साहब, जो जिनका सफर शुरू हुआ था आकाशवाणी से ही। वो एक बहुत ही मशहूर अनाउंसर रहे हैं, ड्रामा आर्टिस्ट रहे हैं, जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर रहे हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं, राइटर, एक्टर, और दो पोइट्री की, गजल की, शायरी की किताबें भी लिख चुके हैं, और बॉलीवुड के अलावा वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं। सर, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा आकाशवाणी के उसी प्रांगण में जहां से आप गुजर करके गए।
8: थैंक यू, धन्यवाद।
7: सर, हम बातचीत कर रहे थे आपका, मैंने बॉलीवुड के सफर की बात करी, बहुत सारी फिल्में आपने की और अभी भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपने जब पहली बार कैमरा फेस किया, वो हम जानना चाहेंगे, हमारे लिसनर्स जानना चाहेंगे, वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा दौर था?
8: वो दौर था, आपको याद होगा, एक फिल्म बन रही थी गांधी
7: जी, बहुत ही फेमस हॉलीवुड का प्रोजेक्ट था वो।
8: तो उस वक्त कोई ऐसा तामझाम तो था नहीं, तो कुछ ऐसा वक्त था, मुझे शायद याद है कि हेलीकॉप्टर से कुछ पंपलेट्स एंड लीफ्स वगैरह थ्रो किए गए थे कि अच्छा, हमें इतना बड़ा क्राउड चाहिए।
7: ओके,
8: क्योंकि मेरे ख्याल से उनकी हत्या का सीन उन्होंने
7: जी पिक्चराइज
8: करना था, और उससे पहले कुछ थी, तो हम तो साहब, हमें तो लगा कि हम तो स्टार बन गए। एक एक खास तौर पे एक ये सामने आ गया कि ओहो, मैं तो फिल्म करूंगा जाऊंगा, लेकिन ये नहीं पता था इसके पीछे की हकीकत क्या है।
7: ओके,
8: अशोका होटल में ऑडिशंस थी, हजारों की संख्या में लोग थे,
7: और सर ये मेरे ख्याल से अर्ली 80s या

0: अर्ली 80s
1: जी।
0: और हम जब वहां पहुंचे साहब तो कोई पूछे ना। अब के टंडन ठीक है भाई आकाशवाणी में छोटा मोटा नाम हो सकता है, लेकिन उस दुनिया में तो कोई नहीं जानता था। तो कोई सज्जन थे हमारे, कोई जान पहचान के निकला है, हु वाज वन ऑफ द टीम मेंबर्स। तो उन्होंने कहा टंडन तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा यार मैं इसके, कहता तू मेरे साथ चल थोड़ा ऑडिशन दे, हमें बहुत से लोग चाहिए। मैं कहा क्राउड नहीं चाहिए। कहता नहीं नहीं डायलॉग होगा
1: जी,
0: ऐसी बात नहीं। तो हम लोग लेके गए तो उनसे बात बात हुई, तो उन्होंने कहा भी ठीक है हम आपको बता देंगे। तो आ गया न्योता।
1: अच्छा,
0: तो उसमें पता लगा कि हम लोग शूट करेंगे। उन दिनों ओमपुरी भी थे उसमें और छोटा सा एक डायलॉग सीन था कि हम लोग भूखे हैं
1: जी,
0: गांधी जी बैठे हुए हैं और हम लोग उनके पास जमघट लगा के बैठे हैं कि बापू हमारा कुछ कीजिए, कुछ नहीं हो रहा, अंग्रेजों ने सब कुछ रोक दिया है, दिस एंड दैट। तो वो मेरे लिए एक पूरा बदन कांप रहा था। और ओमपुरी जी को मैं उनके एनएसजी के दिनों से जानता था।
1: अच्छा,
0: तो वो सांत्वना देता था, टंडन घबराना यार ठीक हो जाएगा सब कुछ। मैं कह यार मैं तो कभी सोचा नहीं था
1: जी।
0: तो ये हल्की सी एक छोटी सी यात्रा की शुरुआत थी
1: जी। और सर इसके साथ साथ एक और मैं बताना चाहूंगा अपने लिसनर्स को भी कि इंडिया का जो पहला डेली टीवी सोप था
0: जी
1: और उसका नाम था हम लोग, बड़ा ही फेमस, उसमें भी आपने काम किया है।
0: जी हाँ, उसमें भी मैंने काम किया है
1: जी।
0: और मैंने ऑडिशन दिया था जहां इस समय हमारा मंडी हाउस में वो है टेलीविजन सेंटर
1: जी,
0: वहां ऑडिशंस उस समय एक छोटी सी बैरक्स थी, वहां ऑडिशंस हुआ करते थे
1: जी। तो सर ये भी वही मेरे ख्याल से मिड 80s रहा होगा,
0: मिड
1: 80s का दौर रहा होगा।
0: और उसमें भी मुझे कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, दो तीन दिन का काम था। तो आई प्लेड प्रभु, दादी जो हैं
1: जी जी जी,
0: जो जी, जी उनका भतीजा।
1: अच्छा,
0: वो जो फैमिली में आता है तो एक तूफान लेकर आता है।
1: अच्छा,
0: तो भाई मेरी बुआ यानी मेरी ओके जो दादी हैं सब,
1: तो आपने
0: मेरी
1: जैसे,
0: वो बुआ हैं
1: जी। आपने जैसे कहा कि छोटा सा और बहुत ही कम समय का रोल था, लेकिन आपने बताया कि वो तो तूफान लेकर आया,
0: मेन कैरेक्टर बन गया था तीन दिनों का।
1: बताइए, तो बहुत बड़ी बात है।
0: तूफान ये मचाया कि भाई आप इनकी केयर करो, इनको तो कैंसर है।
1: अच्छा,
0: तो
1: वो आप ही कहने आते हैं,
0: रिवील हो गया।
1: Okay.
0: तो ये मेरे लिए बड़े एक जिसे बोलते ना बड़ी ही वैल्यूएबल डेज हैं और वैल्यूएबल मोमेंट्स हैं
1: जी
0: कि जो मैंने निभाए। उसके बाद एक और चीज मैं आपको यहां कहना चाहूंगा, मैंने एक सीरियल की थी दिल्ली टेलीविजन के लिए, प्रहरी।
1: अच्छा,
0: दैट वाज बेस्ड ऑन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस।
1: ओके,
0: और उसकी प्रोड्यूसर थी, शायद आप नहीं जानते होंगे, नीलिमा हरजाल जी, जो कि दिल्ली टेलीविजन पे काम किया करती थी।
1: ओके,
0: तो आई वाज वन ऑफ द एक्टर्स, वन ऑफ द टीम मैनेजर्स। हम लोगों ने उसे शूट किया था रणकच में।
1: अच्छा,
0: यहां से गए थे और उसमें काफी बॉम्बे के ही लोग थे सारे। तो ये जर्नी का छोटा छोटा छोटा छोटा,
1: तो ये भी बड़ा ही स्पेशल एक्सपीरियंस आपका रहा होगा। और फिर जाहिर है हमारी आर्म फोर्सेस के लिए हम जो भी काम करते हैं तो बहुत दिल से और बहुत जज्बे के साथ करते हैं।
0: 40-45 दिन का शेड्यूल था।
1: अच्छा, जी सर, हमारे पास समय तो बचा है कम, लेकिन बातें मेरे पास बहुत ज्यादा, तो छोटे छोटे मैं आपसे चलते चलते पूछना चाहूंगा कि आपने कुछ इंटरनेशनल फिल्म प्रोजेक्ट्स भी किए हैं और टीवी प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। मैं आपकी उस उर्दू गजल की शायरी की किताबों पर आऊं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा जल्दी जल्दी।
0: उर्दू की गजल की शायरी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो मैंने ये 80s में लिखना शुरू किया था।
1: अच्छा,
0: मेरे आकाशवाणी के दिनों के दौरान
1: जी जी।
0: लेकिन इतना संजीदा नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि भाई मैं
1: शायरी भी करूंगा,
0: बहर ऐसा मेरा पूरा होगा, मुकम्मल होगा। तो छोटे छोटे बिट्स एंड पीसीज में थे।
1: अच्छा,
0: उन्हें जब मैं लंदन गया तो उन्हें संजोया कहां कहां से, क्योंकि कभी टिकट पे लिखी हुई है कोई छोटे से पेजेस। तो किसी ने देखा वहां पर उर्दू के, हमारे बहुत ही शानदार एक मायनाज व्यक्तित्व था उनका, तो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा टंडन लिख।
1: तो सर कोई शेर, कोई शेर, कोई कोई कोई आपका पसंद का शेर सुनाइए प्लीज।
0: शेर सर याद नहीं, मुझे निकालना पड़ेगा।
1: अच्छा चलें सर, हम आपसे बाद में सुन लेंगे
0: जी।
1: तो वो जो आपने फिर किताबें, फिर वो आपने उसको पब्लिश किया
0: जी, जी। पहली किताब का नाम है वो हिंदी और उर्दू दोनों में शाया हुई
1: जी, क्या नाम था उसका?
0: गुलदस्ता।
1: गुलदस्ता, वाह क्या बात है।
0: और दूसरी शाया हुई कविताओं की
1: जी,
0: पोएट्री। अब तीसरी मेरी इस वक्त जी समय पब्लिश होने के लिए तैयार है
1: जी। सर अभी हमने जो बातचीत की आपसे, वो लग रहा है कि समय तो बहुत कम था, लेकिन बातें बहुत सारी करने की थी। लेकिन अब चलते चलते, क्योंकि समय अब बस खत्म होने ही वाला है, तो मैं चाहता हूं कि आप चलते चलते कुछ बताएं अपनी ऐसी कोई खूबसूरत याद, और आकाशवाणी के जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी कुछ आप अपनी दिल की बात शेयर करें।
0: आकाशवाणी के लोगों से मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि आप कुछ भी बोलें, अल्प भाषा बोलें, बेशक आपको पूरा ज्ञान हो, लेकिन शुद्ध बोलें।
1: क्या बात है सर,
0: खास तौर पे नौजवान पीढ़ी को जिनकी आकांक्षाएं हैं फिल्म इंडस्ट्री में जाने की या थिएटर करने की
1: जी, जी।
0: भाषा जबान तलफ्फुज बहुत जरूरी,
1: बहुत जरूरी। लेकिन सर एक चीज यहां मैं कहूंगा आपको रोक करके कि जो सोशल मीडिया है उसने तो सब पूरी तरीके से बदल के ही रख दी।
0: हमारी सोशल मीडिया और हमारी यहां का नॉर्मल जो मीडिया है
1: जी, जी
0: डिजिटल मीडिया, उसने हिंदी तबाह कर दी है
1: जी।
0: उसने हिंदी तबाह कर दी
1: जी। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात का असर लें और अपनी भाषा को भी सुधारें। सर बहुत बहुत

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
1: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है।
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
1: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
1: इसे तराशा जाता है। और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
1: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
2: जी,
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
2: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
2: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
2: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे

0: प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
1: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
7: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
6: आहा, तो हंस तुम्हारे पास है। लाओ उसे मुझे दे दो।
7: क्यों दे दो?
6: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
7: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
6: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
8: महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
9: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
6: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे। मुझे न्याय चाहिए।
9: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
7: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
9: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
7: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
6: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
7: जी, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
9: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
5: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
9: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे? आज्ञा है।
5: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
3: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
10: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
5: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
6: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
3: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
5: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
4: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
3: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
9: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
8: महाराज की जय हो,
11: महाराज की जय हो,
8: महाराज की जय हो।
0: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने, पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं, नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
12: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलर्ट हूँ मैं चल चल।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 इसरो के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्ययान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी, हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्ययान आदित्य L1 के बारे में।
9: आदित्य L1 के बारे में?
10: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
7: जी सर, उनका नाम है भास्कर आचार्य।
8: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
7: जी, मेरा नाम श्रुति है।
8: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कर आचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
11: सूर्य ग्रह है या तारा?
8: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
7: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
8: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई। सूर्य असल में एक तारा है।
9: अच्छा सर।
6: सर, मेरा नाम सोहम है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
7: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
8: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
6: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
8: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
7: विशाल गैसों का गोला?
6: अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
8: शाबाश, समझ गए ना?
9: जी सर।
7: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
8: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
6: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
8: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है, जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
9: जी सर।
8: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
7: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
8: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
6: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
8: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
9: जी सर।
8: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
6: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
8: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
7: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
8: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
6: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
8: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
7: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
8: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
1: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग। This is Akashvani Kohima, FM Tragopan at 103 MHz.
12: FM Tragopan. News, music and entertainment.
13: This is FM Tragopan.
12: FM 103 MHz.
3: Hello and a very good afternoon to every one of you. Welcome. This is your FM Tragopan at 103 MHz. Aru Ijia Garni, Ami Real Time Traffic Update Diase, Din Bajilaga, Kohima Down Nimide, Mon Kola Logina BHQ Junction, Jalaga Fine, Northbound Kwase, Aru Traffic Do, Majo Diase, Mani Moderate, Abnigan Old Ministers Hill Logina, Jail Colony Jalaga Rasta Lobo Pariase, Southbound Gwile, Ijia Do Traffic Do, Halgase, BHQ Logina Major Junction Jalaga Rasta, Tuita debi, north aro southbound de hulibi, traffic to ichado, halkase. TCP loigina, Razu Point, Jalagarasta northbound ase, aro traffic to majo de ase, mane moderate. Apnikan box cutting do NH ege du census point laga rasta lo pari ase, alag rasta do. Aro southbound gwele, Razu Point do TCP Jalagarasta ase, aro traffic to majo de huigina ase, mane moderate ase. Apnikan bulbari loigina, kocheze, crown do Razu Point, laga rasta lo pari ase. Razu Point Logina Census Point Jalaga Rasta Northbound Ase Aru Traffic to Majode Ase Apnikan Census Point Logina NHAK Jalaga Rasta Low Bari Ase Alag Rasta Aru Census Point Logina Razu Point Jalaga Rasta Southbound Ase Aru Traffic to Majode Ase Apnikan Alag Rasta Census Point Logina NHAK Jalaga Rasta Bi Low Bari Ase High School Junction Logina Census Point Jalaga Rasta Twitter Debi North Aru Southbound Hilibi Traffic to Halka Ase NHAG Junction Logina, Census Point Jalaga Rasta, North Aru Southbound, Twita Debi, Traffic Dijado, Halka Sekuigina, Real Time Traffic Update, Din Bajilaga, Anidia Se.
12: FM Tragopan
13: 103 MHz.
12: News, music, and entertainment.
13: This is FM Tragopan.
12: FM 103 MHz.
3: This is Akashvani Kohima, the news headlines. Union Minister of State for Science and Technology Dr. Jitendra Singh says successful initiatives such as Aroma Mission, Lavender Cultivation and CSIR technologies can help unlock Nagaland's vast potential through science-led development. In Assam, Borjuli site in Sonitpur district notified as a biodiversity heritage site by National Biodiversity Authority under National Rainfed Area Authority funded Wild Rice Conservation Project. In Delhi, Chief Minister Rekha Gupta launches Green Drive Portal at Delhi Secretariat under Ek Bet Magi Nam campaign, taking forward mission to plant 70 lakh saplings across the national capital. Central Government notifies Employees Provident Fund Scheme 2026, replacing EPF Scheme 1952 as part of implementation of Code on Social Security 2020. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav says government is promoting ease of living while ensuring environmental protection. Government issues notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. Election Commission announces schedule for by-elections to three Legislative Assembly constituencies across Bangipur in Bihar, Daida in Madhya Pradesh and Manjalpur in Gujarat. India and Japan exchanges several agreements in different fields including economy and energy security, pharmaceuticals, defense and AI. Indirect talks between Iran and US through mediator conclude in Doha. India's long-standing proposal for Comprehensive Convention on International Terrorism receives renewed support at UN General Assembly. Nominations invited for Pratham Mantri Rashtriya Bal Puraskar Awards 2026 last date is 31st of July. In sports, ICC Women's T20 World Cup England to face South Africa in second semi-final at Kennington Oval in London tonight. In football, Spain to face Austria in round of 32 match of the World Cup tonight. And in weather, India Meteorological Department forecasts parts of northeastern region to have heavy rainfall conditions till Saturday. That is all we have in these news headlines.
12: FM Tragopan
13: 103 MHz.
12: News, music and entertainment.
13: This is FM Tragopan.
12: FM FM 103 megahertz.
3: Hello and a very good afternoon to every one of you lovely listeners, and yes, this is your FM track band at 103 megahertz. I'm your RJ Josiah here, welcoming you everyone as we begin with our second transmission. Let me first of all, the usual thing, give you the program highlights. And so in a very short while, you'll be listening to our Western music show, and today it's SMS request, which will go till 4 p.m. or 1600 hours. And by 1600 hours to 1630 hours, we have local artist program for you. And from 1630 hours to 1650 hours, Rural Connect program. Local talent will follow up starting from 1650 hours to 1700 hours. From 1700 hours to 1800 hours, we have Kaleidoscope program. And today we have Let's Be Friends Yuvavani Radio and Us. That is Kohima edition. And presenter will be Vepu and Rukusa, after which it will be followed by Western music. From 1800 hours to 1910 hours, we have Indie Film Songs, Azuma's Request. And from 1910 hours to 1920, we have Regional News in Nagamis. Regional News in English will follow up from 1920 hours to 1930 hours. From 1930 hours to 2045 hours, we have Western music live phone-in program. And from 2045 hours to 2100 hours, we have national news in Hindi. And from 2100 hours to 2115 hours, national news in English. From 2115 hours to 2130 hours, we have Spotlight for you. And then Hindi Film Songs Burani Git program will follow up from 2130 hours till it's 2200 hours. By 2200 hours, or let's say 10 p.m., we'll be linking FM Rainbow for you. So that is the program we have for you lovelies out there for our second transmission. And of course, the timings for our new set lines are at 1500 hours, 1530 hours, and 2130 hours. Traffic update timings are at 1500 hours, 1530 hours, 1600 hours, 1630 hours, and 1700 hours.
12: FM Track Band.
13: 103 megahertz.
12: News, music, and entertainment.
13: This is FM Track Band.
12: FM 103 megahertz.
14: Have you heard? Census 2027 house listing operation has begun in Nagaland. These are informations to be collected.
15: Basic household amenities such as drinking water, LPG, electricity, sanitation and other essential facilities.
14: When the census officials visit your home, kindly provide accurate information and extend your full cooperation.
15: Your cooperation matters. Our census, our development.
14: Have you heard? Census 2027 house listing operation has begun in Nagaland. These are informations to be collected.
15: Basic household amenities such as drinking water, LPG, electricity, sanitation and other essential facilities.
14: When the census officials visit your home, kindly provide accurate information and extend your full cooperation.
15: Your cooperation matters. Our census, our development.
12: FM Tracker Band.
13: 103 megahertz.
12: News, music, and entertainment.
13: This is FM Track
12: Band. FM 103 megahertz.
3: Hello and a very good afternoon to you all, my lovely listeners out there. Welcome back once again. And of course, you know already, this is a Western music show that's kicking off right now. You know what to do already, because I've already informed you what's the program, and it's SMS request for your reminder once again. What to do is, that is you, all right? You have to do this one. 9436805333 is the number. You send your request messages. Make sure that you mention the name of the song, the name of the artist, your name, your location very clearly and nicely, okay? You can also include some dedications as well if you feel like, okay, that'll be so good. And yes, very important thing is if you could at least come up with two options, all right? If you know for sure that your song may not be there, all right? So that is for your safe play about Asma's request that I'm letting you know. It's a 9 minutes past by the studio clock. It's going to be 10 in just some few seconds. And let me anticipate checking out, of course, reading out your request messages. Meanwhile, this is the track.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार कोहिमा एंड बियॉन्ड, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM ट्रकबैन और मैं हूं आपकी दोस्त RJ वेरोनिका। शाम के 6 बज चुके हैं और शुरू हो गया है आपका अपना SMS रिक्वेस्ट शो, जहां बजेगा आपका पसंदीदा हिंदी फिल्म गीत बिल्कुल आपकी फरमाइश पर। अगर आप भी किसी खास इंसान के लिए गाना डेडिकेट करना चाहते हैं या सिर्फ हमें हाय कहना चाहते हैं, तो तुरंत SMS कीजिए हमारे नंबर 9436805333 पर। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं सुरों का ये यादों सा भरी इस खूबसूरत शाम को। पहला मैसेज हमारे स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये पहला मैसेज आया है दबाशिश हजारिका डिस्ट्रिक्ट मजुली असम से, और ये लिखते हैं सॉन्ग माही वे, सॉन्ग बाय AR रहमान। सो माय डियर लिसनर्स, अपनर खान कोट को थगिलिबे अपनर बिजुदी आजी राती लगा SMS रिक्वेस्ट प्रोग्राम ते गाना अपनर खुशी लगा हनुबो मनसिकुले जी होलिबे पठाई दिबे। आमी अपनर खान लगा फिल्म लगा गीत थकिसिकुले तो जी होलिबे बजाई दिबो कोइकिना कोइ दि असे। तो शुरू करी दिया हो ऐसे आमी खान लगा SMS रिक्वेस्ट प्रोग्राम देबाशीष हजारिका अपना हुनिया से कुले एरे ऐसे माही वे हाईवे फिल्म लगा गीत AR रहमान लगा वास्ते।

वेल दूसरा मैसेज आई शे टू एस ए बिमोल बसुमतरी मसा की चापोरी देमाजी असम पर लिखी कि ना दिया से टारकोएसे कोयला फिल्म लगा गीत देखा तुझे तो बजाई दी भी डेडिकेटेड टू अमल बसुमतरी भाईकोन मुंडा रमेश पात्रो रोनू पात्रो जोगेंद्र रोंगपी सोनाली इंटिंगपी चिखारी रोंगपार बीरेन हंसे हनरिका टिमोंगपी अंजलि बसुमतरी सुनीता बसुमतरी हितेंद्र दास देवाशीष हजारिका रुकोवी लमेठा एंड ऑल फ्रेंड्स वेल बिमोल बसुमतरी आहिबी आमी खान हुनिब आपना लगा पसंदीदा गीत कोयला फिल्म देखा तुझे तो कुमार सानू आरो अलका याग्निक लगा वास्ते

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM ट्रैकबैन 103 मेगाहर्ट्ज पर हिंदी फिल्मी गीत आरजे वेरोनिका के साथ। और यस, अगला मैसेज रोसलिन कोहिमा लिखते हैं, कैन यू प्लीज प्ले दिस ट्रैक तुम हो तो फ्रॉम द फिल्म सैयारा। रोसलिन अपना इटिया हुनियासे कुले, आई एम वेरी हैप्पी टू प्ले यू योर ट्रैक इटिया हियासे सैयारा फिल्म पूरा तुम ही हो। विशाल मिश्रा, राज शेखर आरो हंसिका परीख लगा वास्ते म्यूजिक दिया होशे विशाल मिश्रा, लिरिसिस से राज शेखर, रोसलिन एंजॉय।

वेल माय डियर लिसनर्स, बढ़ते हैं दूसरे मैसेज की तरफ। हेलो, गुड इवनिंग आरजीवी, हम लोग आ गए हैं नागालैंड में, सो प्लीज प्ले दिस सॉन्ग। बेबी को बेस पसंद है, फिल्म सुल्तान एंड डेडिकेटेड टू रोखोविले मेथा के विलेखो मेथा अंजलि बसुमत्री, पूनम बेबी, पूर्णिमा रोज फ्रॉम कोहिमा, अमल बसुमत्री, जोगिंद्र रोंगपी, विली फ्रॉम जुनेबोटो, असी वी, क्रिस्टी, विकसोन्यो, विथी फ्रॉम विपोमा, सालीला, डॉक्टर जुबेन, चोपी ब्रदर्स, चुबा के जमीर, सलितु, मंदिरा रोमोना फ्रॉम गोवा, एंड फॉर आरजे टिया, आरजे लीडिया, आरजे नारो, एंड स्पेशली टू सुनीता बसुमत्री, आरजे वेरोनिका, एंड आरजे केनी फ्रॉम अकूज। वेल अकूज, वेलकम बैक टू नागालैंड, वी आर ग्लैड दैट यू आर हियर। Oof, Nagaland feels very, very fresh that Aku is back. All right, my dear. Well, Aku, anyways, your song is up next. Aru itia mon huniya hobo. Sultan film laga geet, baby ko bass pasand hai. Aur mo umid kuriya se Aku's pra kon kon ke dedicate kurshi. It can be sob itia tune in kuri kina se kuri kina. Umid kuriya se to itia huniya hobo baby ko bass pasand hai. Vishal Dadlani, Samili laga vaste. Vishal Shekhar pra music dia hoishi. Aru Arshit Kamil pra lyricist Korea Hushi. Let's go.

वेल वेल वेल दोस्तों, मुझे आप सबकी सॉन्ग रिक्वेस्ट देखकर बहुत बहुत ही मज़ा आ रहा है। और यस, हर किसी की म्यूज़िक चॉइस बिल्कुल अलग है और यही बात है इस शो की, क्योंकि ये इतना ख़ास बन जाता है ना। तो यस, कीप दोज रिक्वेस्ट कमिंग। मैं कोशिश करूँगी कि हर किसी की फरमाइश में बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं बजा दूँ। ऑलराइट, द नेक्स्ट मैसेज इज कमिंग इन। गुड इवनिंग आरजे, प्लीज़ प्ले द सॉन्ग एक मासूम सा चेहरा। फिल्म जिंदा दिल रिक्वेस्ट, आई मीन डेडिकेटेड टू रोमेश पात्रो, रोनू पात्रो एंड दी लकी गोलाकारा। साम डेडिकेट टू अमोल अमोल बसुमत्री, बिमोल बसुमत्री, बीरेन हंसे, शिखारी रोंगफार, देबाशीष हजारिका, रोखोविले मेठा, जोगिंद्र रोंगपी, सोनाली इंटिंगपी, हरनरिका टिमोंगपी, अंजलि बसुमत्री, सबीना बेगम एंड ऑल एफ एम फ्रेंड्स। वेल माई डियर रोमेश पत्रो जी, अपना लगा गीत इज अपन माई लिस्ट। तो इतना होने लो हो एक मासूम सा चेहरा। फिल्म लगा नाम से जिंदा दिल, उदित नारायण लगा वास्ते म्यूजिक, दिया हुशे नदीम श्रवण, लिरिसिस से समीर।

वेल, दूसरा मैसेज पूरी दिया हुआ है, से मुझसे शादी करोगी, टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी ऑफ मुझसे शादी करोगी, डेडिकेटेड टू ऑल आर्जेस एंड ऑल द स्टाफ मेंबर्स ऑफ आकाशवाणी. माय फ्रेंड्स आर मिनाल, रोमेश, अमल, बिमल, रुकोविले, नारायण, शिवा, दुर्गेश, विक्रम, स्वरजीत, भाई कौन, अविनाश, अंकित, महाराज, प्रेमजीत, हारमोनी फ्रॉम एंड इट पठाई हुशे, जित हितेंद्र दास फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम. वेल हितेंद्र दास जी, अपना लगा मैसेज इतिया मुई लोगों ने पूछी जाओ से, तो मुई जी हुल भी अपना लगा मन पसंद गाना इतिया बजाई दिया हुआ से, मुझसे शादी करोगे फिल्म लगा गीत, सोनू निगम और उदित नारायण लगा वास्ते, और इतिया म्यूजिक दिया हुशे इतु लगा फिल्म लगा गीत, सजीद वजीद लिरिसिस से जलीस अशीरवानी हितेंद्र दास. आई होप ऑल योर फ्रेंड्स कौन कौन लगा नाम लुई हुई तार खान सब रि शुनी दिया हुआ से, कोई उम्मीद कर दिया से यू लगा गीत बजाई दिया पिछते आम खान लगा समय बजाई बचाई दीब कारण. इच्छा आते नमस्ते आरजे दीदी, भगवान फिल्म लगा गीत पहले कभी ना मेरे हाल, ये गाना प्ले कर दीजिए और अमल बसुमत्री, बिमल बसुमत्री, अंजलि बसुमत्री, जोगिंद्र रोंगपी, सुनील पंक्चो, देवभाषीष हजारिका, रोकोविले मेठा, रमेश पत्रो, रोनू, सुनीता बसुमत्री, शिखारी और को डेडिकेट कर दीजिए. थैंक यू योर रेगुलर लिसनर्स भाई कौन, मुंडा डिस्ट्रिक्ट, छराडोय, सनारी, असम. तो ये दुईटा गीत बैक टू बैक होने लो हम पहला गीत आसे मुझसे शादी करोगे.

गोली भी चलेगी साला भेजा भी खुलेगा। पैसा चाहिए तो ठोकना पड़ेगा। गोली भी चलेगी साला भेजा भी खुलेगा।

है कहानी है आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: हेलो,
1: नमस्कार साहब।
0: अरे नमस्कार, कौन बोल रहा है?
1: मैं रेगुलर लिसनर दुर्गेश नागनपुर जसवाड़ी से। जी
0: अच्छा दुर्गेश जी, फाइनली अब है।
1: सर, बारिश हो रही है अभी अपने यहाँ पे जसवाड़ी में, ठंडा
0: ओ अच्छा,
1: मौसम हो गया है।
0: वो तो बहुत बढ़िया वाला न्यूज़ दे रहा है अभी।
1: और आपका प्रोग्राम डीटीएच पर सुन रहे हैं हम अभी,
0: अच्छा अच्छा बहुत बहुत अच्छा
1: एमपी
0: लगा।
1: मेंबर से। जी
0: आज आज का दिन कैसा था आप आपके लिए? अच्छा
1: आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा सर, और दिन में भी आपका कार्यक्रम सुना था
0: हाँ हाँ
1: 3 बजे।
0: हाँ
1: जी
0: चलो, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।
1: अभी
0: और आपके बारे में कुछ थोड़ा बता दीजिए आज दुर्गेश जी।
1: सर मैं एक म्यूजिशियन हूँ,
0: अच्छा
1: सिंथेसाइजर कीबोर्ड प्लेयर मतलब हूँ।
0: आप म्यूजिशियन बोल रहे ना?
1: जी
0: अच्छा मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर?

0: मैं सिंथेसाइजर पियानो।
1: ओके ओके, बहुत इम्प्रेसिव है वो, दैट्स
0: जी
1: सो
0: सर,
1: गुड।
0: और एक
1: आप
0: रेडियो
1: गा भी सकते
0: भी
1: हैं दुर्गेश जी?
0: जी सर, गाते हैं।
1: एक गाना गा दो ना आज, चलो जो आपका फेवरेट है ना वो वाला, सब सुनेंगे, सिर्फ सिर्फ एक लाइन हो जाएगा। चलो देखिए दुर्गेश जी,
0: सर वो गा देता हूँ हिंदी में।
1: चलो ना चलो ना,
0: बारिश हो रही है।
1: हाँ कोई बात नहीं, लाइन इतना क्लियर है।
0: बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए।
1: वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है आपका वॉइस, बहुत अच्छा सच्ची में।
0: जी सर।
1: ऑलराइट, ठीक है, कौन सा गाना अब फरमाइश करेगा?
0: सर अभी तो वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम है, तो जेसी जे का कोई एनी सॉन्ग सुना दीजिए।
1: जेसी जे का? अच्छा वो जेसी जे वाला ना, हम फ्लैशलाइट बहुत अच्छा लगता है, फ्लैशलाइट का ना।
0: जी सर जी,
1: वो वाला बजा दूं?
0: जी सर जी।
1: चलो ठीक है, और डेडिकेशन कर सकते हैं
0: सर सभी लिसनर्स के लिए और फैमिली मेंबर्स के लिए मेरी।
1: चलो चलो ठीक है
0: जी सर, आपके लिए जी।
1: थैंक यू, तो हम बजा देगा, आप इंजॉय करेगा, ठीक है, ये फ्लैशलाइट वाला गाना। चलो ठीक है दुर्गेश जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और अच्छा अच्छा लिख दे रहेगा, ठीक है मैसेज।
0: जी
1: चलो, बाय बाय
0: जी, बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय

0: ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरलम में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया।

0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, "Trust is the biggest asset in today's time and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time." He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both the countries.
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक माय डियर लिसनर्स। इतिया अमी खान लोगों दे गुड इवनिंग FM ट्रगोबन फैमिली लंबोदार रेडियो लिसनर्स ग्रुप ग्राम जसवदी से कोई किन लिखी की नदिया से ग्राम जसवदी से लंबोदार रेडियो लिसनर्स ग्रुप आप सभी का बहुत स्वागत है और थैंक यू सो मच। वक्त निकाला, इतना शाम हो चुका है लेकिन आप सभी जुड़े हुए हैं, सुनकर अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, आज नमस्कार लिसनर्स, दुर्गेश नागिनपुरेन परिवार ग्राम जसवदी से। दुर्गेश जी और आपके प्यारे प्यारे परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया लिखने के लिए। स्वागत है हमारे इस प्यारे से सफर में आप सभी का। वेल गुड इवनिंग आर जे वेरोनिका जी, नमस्कार लिसनर्स। दुर्गेश नागिनपुरे, राधे श्याम नागिनपुरे, वंदना भावना बिलू बिंदु गोलू कुसुम्बाई बाबू दिव्यांज और सूरज कुमार दक्षे प्रेमलाल वर्मा निकेश धर्मेंद्र और ममता भाई वर्मा सूरज वर्मा ऋषभ खनक और भावना वर्मा। वाह, सभी परिवार आज तो एक साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ, बहुत प्यारा लगता है। दुर्गेश जी, बहुत दिन हो चुका है आप से कोई शायरी सुनने को नहीं मिला, अगर आपके पास वक्त है तो आप बिल्कुल बेझिझक एक प्यारा सा शायरी भेज दीजिए हमारे प्यारे लिसनर्स के लिए। ऑलराइट, और दोस्तों इस शाम के मूड को थोड़ा और गहरा करते हुए एक ऐसा गीत जो सीधा दिल के अंदर उतर जाता है, जब प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं बल्कि एक इबादत बन जाता है, तो ये गाना उसी एहसास को बयां करता है। पेश करती हूँ आपके प्यार में फ्रॉम द फिल्म राज़, इसको गाया है अलका याग्निक ने और म्यूजिक दिया है नदीम श्रवण।

Yes, my dear Hunitaga Sobilak, Apunikan Hunia se Akash Vani Kohima, FM Trugwan, 113 MHz de, Moya se Apunakalaga RJ Veronica, Luikina, Purani Hindi Filmi Geet. Well, itja dusra message Luidia Hoese, RJ Veronica ji, thank you for playing song Pyar se Pyar Ham Karne Lagi, Durgesh ne Bheja hai. Durgesh ji, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अच्छा लगा मुझे भी बहुत अच्छा लगा ठीक है गुड इवनिंग एफएम परिवार जे माता दी रेडियो लिसनर्स ग्रुप ग्राम जसवदी से जे माता दी रेडियो लिसनर्स ग्रुप फ्रॉम जसवदी आज रात फुल ब्लास्ट करके सुन रहे होंगे आप लोग है ना गुड इवनिंग शायरी फ्रॉम आर वेरी वेरी ऑन हमारे प्यारे दुर्गेश नागिनपुरे जी तो पेश करते हैं ऑलराइट ये रात चांदनी बनकर आपके आंगन आए ये तारे सा

अरे लोरी गाकर सुलाएं, हो आपकी इतनी प्यारे सपने यार कि नींद में भी आप मुस्कुराए। गुड नाइट लिसनर दुर्गेश नागिनपुरे, वंदना बाबू दिव्यांश नागिनपुरे। वाह वाह वाह वाह दुर्गेश जी, आपने तो हमारे सारे मूड सारी थकान दूर कर दी इस प्यारी सी शायरी से। वेल थैंक यू सो मच। और यस दोस्तों, प्यार जब गहरा हो जाता है तो वो सिर्फ एक जज्बात नहीं रहता, वो एक रिश्ता बन जाता है दिल से दिल का, है ना। और अब आपके लिए मैं एक बहुत ही सोलफुल और इमोशनल गाना लेके आ रही हूँ। ये है दिल का रिश्ता, बड़ा ही प्यारा है, फ्रॉम द फिल्म दिल का रिश्ता। इसको गाया है कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण, और इसको म्यूजिक दिया है नदीम श्रवण। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये गाना पसंद तो ज़रूर आएगा।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु, तेरी
1: हाय।
0: तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर। हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
4: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
5: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
4: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
6: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
7: ठीक है?
6: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
5: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
4: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
8: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
4: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
5: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
4: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
5: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
4: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
5: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
4: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
5: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।